0: राम राम मंडळी, मी डॉक्टर राजेश नामदेव आहे, म्हणजे तुमचा लाडका बाळू. बाळू ऑन एअर मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपल्या बरोबर आहेत रिटायर्ड कर्नल राकेश कुमार, इन्फॅन्ट्री आर्मी डिव्हिजन चे इन्फॅन्ट्री, बरोबर?
1: जी
0: राकेश कुमार, तुम्हाला मराठी बोलायला यायला लागलं का थोडं थोडं?
1: बहुत ज्यादा नाही, लेकिन मैं भी मराठी समझ लेता हूँ बढ़िया से.
0: मग मी मराठीत बोलू?
1: आप बोल सकते हैं, मुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे फिर
0: आपने हिंदी में बोलना है.
1: जी
0: ठीक है, मैं मराठी में बात करता हूँ. चलिए, 21 साल सर्विस में रहे
1: जी,
0: देश के लिए जान देने को तैयार थे
1: जी.
0: पहले ग्रेजुएशन तक मतलब 19-20 साल सिविलियन रहे
1: जी,
0: 20 साल सर्विस में रहे
1: जी,
0: अभी 5 साल वापस सिविल लाइफ में आ गए
1: जी.
0: जब आप बॉर्डर पे 24-24 घंटा 48-48 घंटा काम कर रहे थे
1: जी,
0: जब पता नहीं था कहां से गोली आएगी, कब
1: जी,
0: आएगी
1: जी,
0: आपका परिवार घर में था
1: जी,
0: वो हो सकता है साथ में हो सकता है फील्ड में हो तो बाहर हो
1: जी,
0: उस वक्त आप जब देखते थे
1: जी,
0: इधर वॉर फ्रंट तो 24 घंटा इनडायरेक्ट वॉर चालू है
1: जी,
0: अभी चाइना साइड भी शुरू हो गया
1: जी,
0: अभी ये बांग्लादेश का नया शुरू हो गया
1: जी,
0: इतने वॉर फ्रंट पे तुम लोग हो, और देश में कभी कभी सुनते ये क्या हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, किसी जात पात के मामले में लोग झगड़े कर रहे हैं, और नुकसान किसका कर रहे हैं? हमारा ही गवर्नमेंट का
1: जी.
0: ST को तोड़ दिया, ट्रेन जला दी
1: जी,
0: प्रॉपर्टी तोड़फोड़ कर दी, दुकानें तोड़फोड़ कर दी
1: जी.
0: मतलब जिस देश के लिए आप लोग जान देने को तुले हैं
1: जी,
0: और जिन देशवासियों के लिए भी जान देने को तैयार हो आप लोग
1: जी,
0: उनका ये बर्ताव देख के
1: जी,
0: सुन के कैसा लगता था?
1: बहुत पीड़ा होती है कभी कभी जब ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि लोगों ने अपने तोड़ फोड़ की या बस जला दिया या बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसमें देश हित का नुकसान है. लेकिन मेरे ख्याल से देश जो है वो हमारा बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है. एंड मेरा मानना ये है कि जो ये देश का कल्याण है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फौजी करते हैं या लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान, तो उन्होंने ये मान के दिया कि किसान और जवान ये बेसिक पिलर हैं जो कि देश को आगे लेके जा सकते हैं. पर मेरा मानना यह है कि हर एक आदमी जो अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता से करता है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, वो देश सेवा में अपनी बराबर की हिस्सेदारी निभा रहा है. हाँ, ये जरूर है कि जब एक्सटर्नल एग्रेशन की बात आती है, जब बाहरी ताकतों से लड़ने की बात आती है, तो सेना की उसमें प्रमुखता होती है बाई डिजाइन, बाई डिफॉल्ट. और उसमें हम शायद हमारे देश के सिपाही अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है. उनका पैट्रियोटिज्म जो हमारी भारतीय सेना का है और जो देश के लिए कर गुजरने के लिए या लड़ मरने की जो क्षमता है, उसमें बिल्कुल संदेह नहीं किया जा सकता, वो बहुत ही ऊंचे स्तर का है. लेकिन साथ में जो हमारे देशवासी, अगर आप देश की उस भावना को समझते हैं, देश की उस जो भी थ्रेड को, आप देश की जो नोशन है, कंट्री का जो हमारा जो नोशन है, आप उसको अगर रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन बराबर से दे सकते हैं अपने काम को एक्सेलेंट वे में परफॉर्म करके. चाहे वो किसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपके जैसे आर्टिस्ट हो, मुझे लगता है कि आज जो आप काम कर रहे हैं अपने पैशन को फॉलो करके, और आपने जितने जनमानस तक अपना ये संदेश पहुंचाया है, अगर उसमें से 1% भी लोग इससे अफेक्टेड हो, इंस्पायर हो, और वो मोटिवेट होकर के कुछ अच्छा काम कर सके, तो मुझे लगता है आपने अपना काम बखूबी किया है. मुझे सिर्फ पीड़ा उस समय होती है जब लोग अपनी आपसी हितों के लिए या बहुत छोटी सोच के कारण देश का, समाज का और अपने फ्यूचर का हित करते हैं. और उसमें मेरे ख्याल से टॉप लेवल पे है ये जो आगजनी और राइट्स हैं, ये बिल्कुल ये हमारे देश को 4 कदम आगे ले जाने के बजाय 40 कदम पीछे ले जाने वाला काम है. तो ये जब मैं देखता हूँ कि लोग बहुत छोटी छोटी जगहों पे, उनको लगता है कि गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करने का लड़ाई बड़ा सिंपल है कि आप जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान करें, वो इस समय ये भूल जाते हैं कि वो जो सरकारी संपत्ति है वो हमारे देश का हिस्सा है, देश की प्रोग्रेस का पार्ट है, और जब आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो आप अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज आपके रेडियो के माध्यम से मैं उन सब लोगों को अपील करना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी इस तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं या कभी भी आपको इस तरह के जगहों पे जाने का मौका मिलता है तो आप अपने लोगों को भी बताएं और बाकी अपने दोस्तों और जो भी आपकी जानकारी में लोग हैं उनको ये समझाएं कि आप जो करते हैं वो उससे अल्टीमेटली देश का हित हो रहा है और आपका अपना फ्यूचर खराब हो रहा है। हम अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, हम अपने लोगों को ही पीछे लेके जा रहे हैं, तो हमको ये नहीं करना चाहिए। बाकी प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव तरीके हैं और मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स बहुत सभ्य तरीके से भी की जा सकती है, विचार विमर्श से भी लड़ाई ली जा सकती है, और बाकी डेमोक्रेसी में हमारे पास एक अल्टीमेट वेपन है जिसको हम मतदान बोलते हैं, आप इसका इस्तेमाल करें। आज की डेट में भी हमारी जनता मेरे ख्याल से 60% जनता ही वोट करती है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वोटिंग परसेंटेज, 60% 70% तक, तो इससे ज़्यादा तो मैंने कभी सुना नहीं कि 70% से ज़्यादा कभी हमारी एक अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में गई हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने विचारों के सपोर्ट में जो सरकार आती है उसको चुने और आप उसमें देश के निर्माण में भाग लें बजाय इसके कि आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करें।
0: और जब ये देखते हैं कि हमारे लोग ही
1: जी
0: दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं, दुश्मनों को खबरें दे रहे हैं, उसके कारण आपके साथियों को तकलीफ हो रही है, साथियों की जान जा रही है, तब कैसा लगता है आप लोगों को?
1: देखिए, हिंदी में कहावत है कि

0: तो शायद उनका वो अंत नहीं होता। तो ये तो बहुत पीड़ादायक बात है और ऐसा होता है हमारे कंट्रीज में भी, हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश हित में ना जाकर के देश के अहित के लिए काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग जासूसी भी करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत इम्पोर्टेंट जो सूचनाएं हैं वो देते हैं, या फिर देश विरोधी गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि जाति संप्रदाय के क्षेत्र में आके बंटवारा करना या उस फीलिंग को बढ़ाना, या एक आप इसके समर्थन में जब आप उतरते हैं सड़कों पे और तोड़फोड़ करते हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी में आता है। ये सारी जो गतिविधियां हैं वो देश अहित में हैं और इससे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे करके इस कंट्री को यहाँ तक पहुँचाया है पिछले 75 सालों में। और मुझे लगता है कि हमको सेंटिमेंट्स की कीमत समझनी चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि अगर आज हम देश को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं और एक ग्लोबल लेवल पे हम अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम में से हर एक बंदा अपने तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करे और देश के अहित में जाने वाली सारी गतिविधियों पर रोक लगाए, चाहे वो कम्युनल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो सांप्रदायिक के अलावा जाति के आधार पे भेदभाव करने वाली बात हो, या अपना काम नहीं करके। जैसे मैं एक सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक रोड का इंजीनियर भी अपना काम सही से नहीं कर रहा और रोड के निर्माण के लिए जो उसको स्पेसिफिकेशंस दिया गया है और उस स्पेसिफिकेशंस पे काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरह से देश का आईटी है, क्योंकि वो जो रोड बनाएगा वो बजाय 15 साल चलने के वो अगले 2 साल में ही खराब हो जाएगी
1: और उसमें लोगों की जान जाएगी,
0: और उसमें जो लोगों की जान जाएगी वो अलग है। तो आप जब भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से आप अपने कम्युनिटी को, जाति को, संप्रदाय को, सोसाइटी को, देश को आप अहित पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसी हमें देश विरोधी गतिविधियों से बचना चाहिए। अब हम पहले की बात अलग थी, जब हमारा सब लोगों को एडुकेशन नहीं मिल रहा था और लोगों को ये सब बातें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के कारण मुझे लगता है हर लोग इस बात को समझते हैं। और पर एक मुझे एक पॉजिटिविटी इस बात से दिखती है कि आज जितने लोग शायद नेगेटिव नहीं हैं, उससे कहीं बहुत ज़्यादा लोग इस मामले में पॉजिटिव हैं और लोग इस बात की महत्ता को समझते हैं। और आज मैं सोशल मीडिया का जो ट्रेंड देखता हूँ, छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को उजागर करना, उसको वायरल बनाना और उसको इस तरीके से बनाना कि बाकी लोग भी उसको फॉलो कर सके, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। तो जब भी मैं ऐसी खबर सुनता हूँ, मैं निराश जरूर होता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे यंगस्टर्स आज की डेट में इन बातों को समझते हैं, उनको इस बात का एहसास है कि हमको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, और देश हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये एक मैं पॉजिटिव आउटकम देखता हूँ।
1: अच्छा, आपका स्कूलिंग बिहार में हुआ?
0: जी।
1: उस वक्त गांव में हुआ, शहर में हुआ?
0: हम उसको पूरी तरह से शहर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कस्बा समझ सकते हैं, छोटी सी जगह
1: मुजफ्फरपुर। कैसे लोग थे?
0: बहुत ही
1: बचपन की यादें बताइए।
0: जी, बहुत ही सिंपल। हमारा जो शहर था वो एक कस्बे के तौर पे समझिए, और बहुत ही अतरंगी माहौल होता था। हम बचपन में बहुत शरारते करते थे, दिन भर हमारा स्कूल में और उस बाकी जो बचा समय था वो हम
1: ग्राउंड में
0: बच्चों के साथ खेलने में बिताते थे। और चूंकि कस्बा था, खेलने की बहुत जगह नहीं थी, तो जो भी गली और जो भी हमारे आसपास जो भी छोटा सा खेल का मैदान मिलता था, तो हमने भी शायद वही काम किए जो उस समय के बहुत सारे लोगों ने किया, और बहुत शरारतें लोगों के साथ भी, अपने बाकी खिड़की के शीशे तोड़ना, छोटी छोटी शरारतें घर में जा करके, नो फल तोड़ लेना, किसी के बगीचे से अमरूद तोड़ लेना, लीची तोड़ लेना, और इस तरह की बहुत बहुत सारी हरकतें और बहुत सारी शरारतें हमने भी की हैं। बट वो एक बहुत अच्छा दौर था, क्योंकि उस समय मैंने जो एक कम्युनिटी लिविंग का एग्जाम्पल देखा, वो बहुत खास बात थी हमारे।
1: क्या बात?
0: जब हम बचपन में सारे मोहल्ले के बच्चे, हमारा एक टाइमिंग होता था कि ठीक है, हम शाम को 4 बजे मिलेंगे और उसके बाद हमारा क्रिकेट होगा या कुछ और गेम होगा, तो वो कम्युनिटी लेवल बहुत ब्यूटीफुल था। मुझे अभी भी याद है कि उस समय जो हमारे त्यौहार होते थे वो एक बहुत ही आत्मीयता और बहुत ही अमेजिंग तरीके से, होली तो हमारा फेवरेट

0: त्योहार होता था, क्योंकि हर घर से हर आदमी उस समय बाहर होता था। हमारे मोहल्ले में करीब 20 घर होते थे और सब लोग बाहर आते थे, सब लोगों का पार्टिसिपेशन होता था। हमने तो सड़क के बगल में गड्ढा भी खोदा था, बच्चों को भी उसमें डालते थे, बड़ों को भी उसमें डालते थे, लेकिन जो पार्टिसिपेशन था, मैं वो होली सेलिब्रेशन तो आज तक नहीं भूल सकता। बहुत ही ब्यूटीफुल। हमारे बिहार में उस समय कल्चर था कि होली हमारी दो पार्ट्स में खेलते थे। तो जो सुबह का पार्ट होता था वो रंग का होता था, सुबह 9 बजे से शुरू होता था और वो 12-1 बजे 2 बजे तक चलता था। और उसके बाद क्या होता था कि आपका एक नॉर्मल ड्रिल होती थी कि आप जाएं, फिर आप अपने रंग से पुते हुए चेहरे को साफ करें, फिर नए कपड़े पहने और ट्रेडिशनल ड्रेस जो भी उस समय लोगों को सूट करता था, तो वो ट्रेडिशनल ड्रेस नए कपड़े पहने, और फिर हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे और अबीर गुलाल का इस्तेमाल होता था और सबके यहाँ बहुत बढ़िया पकवान बनते थे। तो शाम तक ऐसी हालत हो जाती थी कि मतलब आप कुछ और खा ही नहीं सकते थे। और उस समय एक ट्रेंड था कि जितने भी आपके दोस्त हैं वो आपको शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक आपको सबको कवर करना है। और ये बहुत प्यारा ट्रेंड था, बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी लिविंग का एग्जांपल मैंने देखा है। आजकल मैं देखता हूँ तो अभी जैसे नासिक में मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो है अभी भी है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर वो जो उस समय का जो माहौल था वो तो मैं कहीं मिस करता हूँ डेफिनेटली। अभी हमारी जो सोसाइटी का जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि अभी वो बात नहीं है, शायद अलग अलग जगहों से भी लोग आए हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अभी वो शायद गांव के वो जो मोहल्ले की और जो छोटे कस्बे की जो मासूमियत है वो शायद अभी शहरों में नहीं है। ये भी एक अलग तरीके का आयाम लिया हुआ है, ये भी ब्यूटीफुल है, पर पुरानी बातों की तुलना नहीं कर सकते।
1: स्कूल लाइफ कैसा रहा?
0: स्कूल लाइफ बहुत बढ़िया था।
1: स्टूडियस थे हमेशा?
0: बहुत स्टूडियस तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा अगर मैं सही मायनों में बोलूं तो मेरा बचपन में तो मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई में बाकी बच्चों से बेहतर ज़रूर था। कम पढ़ाई करता था, लेकिन जितने भी मैंने पढ़ाई करी या जितना भी टाइम मैंने डिवोट किया, तो मैं अच्छा, मेरे रिजल्ट्स हमेशा बढ़िया ही रहते थे। नॉट पॉसिबली द फर्स्ट और सेकेंड टॉपर, लेकिन पहले 5 बच्चों में तो मैं कहीं भी किसी स्कूल में मैं हमेशा ही।
1: और स्पोर्ट्स वगैरह, अदर एक्टिविटी क्या थी स्कूल में?
0: स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की अपने बचपन में, और शायद उसका कारण ये भी था कि हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। सरकारी स्कूल में हमने क्लास 8वीं के बाद शुरू किया, उसके पहले की जो हमारी पढ़ाई लिखाई थी वो एक कॉन्वेंट स्कूल में होती हुई थी, और छोटा कस्बा था, स्कूल भी बहुत छोटा था, तो बहुत ज़्यादा वैसे स्पोर्ट्स का तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने इंडोर स्पोर्ट्स में, चूंकि हमारे स्कूल में इंडोर स्पोर्ट्स का बोलबाला था, तो इंडोर स्पोर्ट्स में मैंने थोड़ी दिलचस्पी ली। मुझे चेस बहुत पसंद था बचपन में, और मैं अभी भी ठीक ठाक चेस खेलता हूँ। अभी तो काफ़ी समय से नहीं खेला, लेकिन वो दिलचस्पी थी। कैरम वगैरह हम लोग बहुत
1: तो
0: खेलते थे।
1: चेस के कारण मूव्स करना आपको आसान गया होगा
0: शायद
1: में, ये डिजाइन करना,
0: एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चेस जो है आपकी एक लॉजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है, और उसका डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्ट अफेक्ट और रिजल्ट तो आपको मिलता ही है।
1: आपको फोर्स में जब आप थे तो आपको क्या जिम्मेदारी थी ज्यादातर कि नहीं भाई राकेश कुमार में ये क्वालिटी है वो यूज करते हैं, ऐसा कुछ होता था सबके साथ?
0: मेरी अगर मैं अपने यंगस्टर डेज की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब तो मेरे सीनियर्स शायद ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे, बट मेरी तरफ से मेरी एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की क्षमता मेरी हमेशा से ज़्यादा अच्छी रही है। तो कभी भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो, आउटडोर्स में कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराना हो, कोई ट्रेनिंग इवेंट कराना हो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं हमेशा अपने सीनियर्स के लिए एक बेहतर चॉइस था।
1: ओके
0: जी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मेरा हमेशा से स्ट्रांग पॉइंट था, क्योंकि मेरी ये काबिलियत थी एडमिनिस्ट्रेशन में या लॉजिस्टिक्स को सही तरीके से प्लान करना, एंटिसिपेट करना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और किस तरीके से लोगों को ब्रीफ किया जाए ताकि ये पूरा इवेंट जो है वो सही तरीके से चल पाए। ये मुझे लगता है ये मेरी दिलचस्पी भी थी, और शायद जैसा आपने बोला चेस खेलने के कारण आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, और उसको आप प्लान करके अपने एग्जीक्यूशन में शामिल कर सकते हो। तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था शुरू से।
1: और आपने जब ट्रेनिंग ली तो कुछ स्पेसिफिकेशन होती है क्या सेकंड लास्ट ईयर में वगैरह?
0: नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग में कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होती। मिलिट्री ट्रेनिंग में आर्म्स स्पेसिफिकेशंस होता है। जैसे आईएमए में जब आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक आप फिट सोल्जर बनते हैं और आपकी ट्रेनिंग के लास्ट में आपको आर्म्स अलॉट होते हैं। जैसे मुझे इन्फेंट्री अलॉट हुआ।
1: वो कैसे अलॉट होती है? चॉइसेस पूछी जाती है कि आपका
0: चॉइसेस और मेरिट लिस्ट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने जो भी आर्म्स के लिए चॉइस दी है और आप पासिंग आउट में जिस मेरिट पे हैं उसके हिसाब से, वो उनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। और मुझे लगता है ये सिस्टम बहुत जगह पे फॉलो करना चाहिए कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अगर क्लास में टॉप कर रहे हैं तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। जैसे अमूनन हम तौर पे देखते हैं कि यूपीएससी एग्जाम का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर आप टॉपर्स हैं तो आपको आईएएस या आईएफएस आप चूज करेंगे, और अगर उसके बाद आपकी मेरिट है तो वो जनरली आईपीएस में जाएगी, और उसके बाद की जो मेरिट लिस्ट है वो बाकी सर्विसेज में जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि ये माना जाता है कि जो टॉपर्स हैं वो तो या तो फॉरेन सर्विस लेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेंगे, पर हमारे में इस तरह का नहीं है। हमारे में क्या होता है, अगर जैसे सपोज कीजिए कि 15 कोर हैं और 15 कोर में हमको इंडियन आर्मी में कैडेट्स को भरना है, तो हम 15 कोर का एक ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक को रिपीट करेंगे। तो ऐसा होगा कि 1 से 15 तक की जो मेरिट लिस्ट बनी है, अगर सपोज कीजिए 400 कैडेट हमारे पास आउट हुए हैं, तो 1 से 15 तक की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन 15 कोरों में जाएगी। फिर 15 से 30 के साथ भी यही रिपीट होगा।
1: ओके।
0: फिर 30 से 45 के साथ भी यही रिपीट होगा।
1: वेरी गुड।
0: तो इसका मतलब अगर मान लीजिए सिग्नल कोर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि ये बहुत पॉपुलर नहीं है, तो वैसा नहीं होगा जैसा अमूनन यूपीएससी में होता है कि एकदम बिल्कुल मेरिट लिस्ट में छटे हुए लोग ही अब इसमें आएंगे, और हम पहले ही मान लेते हैं कि भाई ये लोग तो सारे ब्राइट लोग तो किसी एक अलग ही जगह पे चले गए,
1: तो पूरा बैलेंस निकल जाएगा।
0: जी, तो ऐसा नहीं होता आर्मी में। आर्मी में ये होता है कि अगर सिग्नल कोर है तो इसमें मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का टॉपर भी आएगा, और नीचे से जो सो कॉल्ड जो मेरिट लिस्ट में काफी पीछे हैं उसमें से भी बंदे आएंगे। तो एक कोर में वो बैलेंस हमेशा बना रहता है। तो इन्फेंट्री में ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि जो कैडेट जो टॉपर हैं वो इन्फेंट्री में नहीं जाते, वो तो हमेशा आर्मर्ड में ही जाते हैं या आर्टिलरी में ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। इन्फेंट्री में भी आपको टॉपर्स मिलेंगे, आर्मर्ड में भी टॉपर्स मिलेंगे, आर्मर्ड में भी लेगार्ड्स मिलेंगे। सिमिलरली एक आर्मर्ड कोर है हमारी, आर्मर्ड कोर जिसमें सेना जो है हमारी टैंकों के साथ लड़ती है।
1: ओके।
0: जी जी। तो ये एक बहुत ही मेरिटोरियस सिस्टम है जिससे आप हर कोर की बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मापदंड है जो बाकी जगह पे भी
1: होना चाहिए,
0: अनुकरण कर सकते हैं आप इसका।
1: और अभी मेन आपके परिवार के बारे में बताइए।
0: मेरे परिवार में मेरी माँ है, अभी पिताजी तो नहीं रहे, और
1: सब नासिक में।
0: मेरी माँ अभी मेरे साथ नासिक में रहती हैं मेरे फार्म पे, और मेरी पत्नी के अलावा मेरा एक ही बच्चा है, बेटा है मेरा अमोलिक शौर्या, और वो अभी ही इज अबाउट टू टर्न 14, सो ही इज गेटिंग इनटू टीनेज।
1: तो उसकी क्या इच्छा है
0: और
1: उसके प्लान्स बनना शुरू हो गए कि नहीं अभी? बिल्कुल, बहुत प्लान्स बने।
0: नहीं नहीं नहीं बिल्कुल, और उसको शायद हमारी आर्मी लाइफ देख करके उसको शूटर बनने की उसको शायद प्रेरणा मिली।
1: ओके, सो ही इज इन स्पोर्ट्स।
0: ही इज इनटू स्पोर्ट्स, ही इज डूइंग वेल इन स्टडीज आल्सो। अशोका ग्लोबल अकेडमी में यहाँ नासिक में वो पढ़ रहा है, और शूटिंग भी करता है, और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि अभी वो स्टेट लेवल पे यस रिप्रेजेंट किया, और वो शूटिंग में नेशनल के लिए उसने क्वालिफाई किया है, और अभी वो देखते हैं स्पोर्ट्स को सीरियसली ले रहा है, देखते हैं वो कहाँ पहुँचता है। जी
1: ओके, आगे के क्या प्लान्स?
0: मेरा आगे का प्लान्स तो अभी तक जो है वो जैसा मैंने पहले बोला कि मैंने एक इंटरप्राइज फार्म्स ऑर्गेनिक जो मैंने अपना फार्म बनाया उसी को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्रो टूरिज्म एंड इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन मुझे डेवलप करना है। अभी हमने कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं
1: जैसे
0: जिसमें मैं अपनी तरह के एंटरप्रेन्योर्स की मदद करना चाहता हूँ, और मुझे क्योंकि मैंने बिल्कुल नए से शुरुआत की, मुझे समझ में आया कहाँ कहाँ गैप्स हैं और कहाँ कहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, और मैं उसके अलावा एक बिजनेस पर्सन को कौन कौन से सॉफ्ट स्किल डेवलप करने चाहिए ताकि अपने वो बिजनेस को एक नए आयाम पे लेकर के पहुंच सके, उसके लिए भी हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। सो इट इज बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आपको उन कौन कौन से सॉफ्ट स्किल पे फोकस करना चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो हमने वो कोर्स लॉन्च किया है, वो अभी हम वीकेंड कोर्सेज चलाते हैं उसका, एक वो दिन भर की भी क्लासेज हैं, हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी चलाते हैं, और हम आपको वो अभी तो हमने फिलहाल 7 दिनों का कोर्स बनाया हुआ है, इट्स ए पावर पैक्ड कोर्स जिसमें हम हर एस्पेक्ट पे कवर करते हैं, तो इस पे फोकस कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अपने जैसे बहुत सारे एंटरप्रेनर्स बना सकें जो हमारे इस कंट्री को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन एज ए इकोनॉमिक माइट, हम इसको आगे लेके जा सके।
1: आपके फार्म का कुछ पेज वगैरह है जो जिसको फोटोज वोटोज वो लोग देख सके?
0: जी, हमारा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और हमारी इंटरनेट पे भी प्रेजेंस है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। सो आप फॉग फार्म्स ऑर्गेनिक,
1: फॉग FOG,
0: जी FOG, फॉग फार्म्स ऑर्गेनिक, एंड हमारा वेबसाइट भी है www.fogfarmsorganic.com। तो आप जितने भी हमारे प्रोसीजर्स हैं, जितने भी हमारे फैसिलिटीज हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ये सब आप उस पे रीच आउट कर सकते हैं।
1: थैंक यू कर्नल साहब, होप यू एंजॉयड।
0: बिल्कुल,
1: 3 संडेज दिए आपने हमारे लिए,
0: तहे दिल से आपका शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस खास अवसर पे बातचीत करने के लिए। और मैं आपको सही में बधाई देना चाहूंगा कि आपने ना तो सिर्फ अपना पैशन फॉलो किया, बट आप जिस शिद्दत से ये काम कर रहे हैं, मुझे आपने बताया कि ये 10 साल आपने अभी पूरे किए हैं, इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट, इट्स ए रिमार्केबल शो ऑफ डिसिप्लिन कि आप इस चीज को 10 सालों से निरंतर कर रहे हैं। अगर ऐसे डिसिप्लिन से हम किसी भी फील्ड में उतरे, मैं लास्ट संदेश में आपने अपने सारे दर्शकों या श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि अगर आप इस डेडिकेशन से किसी भी फील्ड में उतरे और अगर आप उसमें 10 साल तक लगे रहें, तो एक्सीलेंस इज इनएविटेबल। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्सीलेंस में पहुंचेंगे, वो तो होना ही होना है। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: धन्यवाद, और हम भी जरूर आएंगे फॉग फार्म्स पे।
0: थैंक यू, यू आर ऑलवेज वेलकम।
1: मंडळी, देशावर प्रेम फक्त 2 दिवस नसतं करायचं, आयुष्यभर करायचं असतं, आणि देशसेवा म्हणजे फक्त मिलिटरीतच जायला गरज नाही। तुम्ही तुमची सिव्हिल ड्युटीज जरी पाळली ना, व्हॉट्सअपवर आपण काय फॉरवर्ड करतो काय नाही, कोणत्या चर्चेत सहभागी होतो, कोणाशी चर्चा करतो, कुठली गोष्ट मनात ठेवायची, कुठली एका कानाने ऐकायची दुसऱ्या कानाने सोडून द्यायची, ह्या गोष्टी जरी शिकले, करप्शन होणार नाही ह्याची काळजी घेतली, करप्शन एका हाताने होत नाही, करप्शन दोन्ही हाताने होतं, कर्नल म्हटले तसं वोटिंग नियमित केलं, असं म्हणून चालणार की पर्यायच नाही, तुम्ही सुरुवात तर करा, पर्याय आपोआप निर्माण होतील ज्यावेळेस त्यांना वाटेल की लोक चांगल्यालाच मतं देत आहेत, कारण सगळेच वाईट नसतात, चांगले असतात, तर वाईटातली पण चांगली बाजू शोधायला पाहिजे आणि आपण आपली देशाच्या प्रती ड्युटी पूर्ण करायलाच पाहिजे। राम राम मंडळी, भेटूया।

मोहब्बत जो में जिनके हाथ जवानी पांव पड़े दिन रात सुने फिर हाय वो किसकी बात हो।

0: राम राम मंडळी, मी डॉक्टर राजेश नामदेव आहे, म्हणजे तुमचा लाडका बाळू. बाळू ऑन एअर मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपल्या बरोबर आहेत रिटायर्ड कर्नल राकेश कुमार, इन्फॅन्ट्री आर्मी डिव्हिजन चे इन्फॅन्ट्री, बरोबर?
1: जी
0: राकेश कुमार, तुम्हाला मराठी बोलायला यायला लागलं का थोडं थोडं?
1: बहुत ज्यादा नाही, लेकिन मैं भी मराठी समझ लेता हूँ बढ़िया से.
0: मग मी मराठीत बोलू?
1: आप बोल सकते हैं, मुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे फिर
0: आपने हिंदी में बोलना है.
1: जी
0: ठीक है, मैं मराठी में बात करता हूँ. चलिए, 21 साल सर्विस में रहे
1: जी,
0: देश के लिए जान देने को तैयार थे
1: जी.
0: पहले ग्रेजुएशन तक मतलब 19-20 साल सिविलियन रहे
1: जी,
0: 20 साल सर्विस में रहे
1: जी,
0: अभी 5 साल वापस सिविल लाइफ में आ गए
1: जी.
0: जब आप बॉर्डर पे 24-24 घंटा 48-48 घंटा काम कर रहे थे
1: जी,
0: जब पता नहीं था कहाँ से गोली आएगी, कब आएगी
1: जी,
0: आपका परिवार घर में था
1: जी,
0: वो हो सकता है साथ में हो सकता है फील्ड में हो तो बाहर हो
1: जी,
0: उस वक्त आप जब देखते थे
1: जी,
0: इधर वॉर फ्रंट तो 24 घंटा इनडायरेक्ट वॉर चालू है
1: जी,
0: अभी चाइना साइड भी शुरू हो गया
1: जी,
0: अभी ये बांग्लादेश का नया शुरू हो गया
1: जी,
0: इतने वॉर फ्रंट पे तुम लोग हो, और देश में कभी कभी सुनते ये क्या हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, किसी जात पात के मामले में लोग झगड़े कर रहे हैं, और नुकसान किसका कर रहे हैं? हमारा ही गवर्नमेंट का
1: जी.
0: ST को तोड़ दिया, ट्रेन जला दी
1: जी,
0: प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ कर दी, दुकानें तोड़ फोड़ कर दी
1: जी.
0: मतलब जिस देश के लिए आप लोग जान देने को तुले हैं
1: जी,
0: और जिन देशवासियों के लिए भी जान देने को तैयार हो आप लोग
1: जी,
0: उनका ये बर्ताव देख के
1: जी,
0: सुन के कैसा लगता था?
1: बहुत पीड़ा होती है कभी कभी जब ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि लोगों ने अपने तोड़ फोड़ की या बस जला दिया या बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसमें देश हित का नुकसान है. लेकिन मेरे ख्याल से देश जो है वो हमारा बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है. एंड मेरा मानना ये है कि जो ये देश का कल्याण है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फौजी करते हैं या लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान, तो उन्होंने ये मान के दिया कि किसान और जवान ये बेसिक पिलर हैं जो कि देश को आगे लेके जा सकते हैं. पर मेरा मानना यह है कि हर एक आदमी जो अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता से करता है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, वो देश सेवा में अपनी बराबर की हिस्सेदारी निभा रहा है. हाँ, ये जरूर है कि जब एक्सटर्नल एग्रेशन की बात आती है, जब बाहरी ताकतों से लड़ने की बात आती है, तो सेना की उसमें प्रमुखता होती है बाई डिजाइन बाई डिफॉल्ट, और उसमें हम शायद हमारे देश के सिपाही अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उसमें कोई शक नहीं है. उनका पैट्रियोटिज्म जो हमारी भारतीय सेना का है और जो देश के लिए कर गुजरने के लिए या लड़ मरने की जो क्षमता है, उसमें बिल्कुल संदेह नहीं किया जा सकता, वो बहुत ही ऊंचे स्तर का है. लेकिन साथ में जो हमारे देशवासी, अगर आप देश की उस भावना को समझते हैं, देश की उस जो भी थ्रेड को, आप देश की जो नोशन है, कंट्री का जो हमारा जो नोशन है, आप उसको अगर रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन बराबर से दे सकते हैं अपने काम को एक्सीलेंट वे में परफॉर्म करके. चाहे वो किसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपके जैसे आर्टिस्ट हो, मुझे लगता है कि आज जो आप काम कर रहे हैं अपने पैशन को फॉलो करके, और आपने जितने जनमानस तक अपना ये संदेश पहुंचाया है, अगर उसमें से 1% भी लोग इससे अफेक्टेड हो, इंस्पायर हो, और वो मोटिवेट होकर के कुछ अच्छा काम कर सके, तो मुझे लगता है आपने अपना काम बखूबी किया है. मुझे सिर्फ पीड़ा उस समय होती है जब लोग अपनी आपसी हितों के लिए या बहुत छोटी सोच के कारण देश का, समाज का और अपने फ्यूचर का हित करते हैं. और उसमें मेरे ख्याल से टॉप लेवल पे है ये जो आगजनी और राइट्स हैं, ये बिल्कुल ये हमारे देश को 4 कदम आगे ले जाने के बजाय 40 कदम पीछे ले जाने वाला काम है. तो ये जब मैं देखता हूँ कि लोग बहुत छोटी छोटी जगहों पे, उनको लगता है कि गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करने का लड़ाई बड़ा सिंपल है कि आप जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान करें, वो इस समय ये भूल जाते हैं कि वो जो सरकारी संपत्ति है वो हमारे देश का हिस्सा है, देश की प्रोग्रेस का पार्ट है, और जब आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो आप अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज आपके रेडियो के माध्यम से मैं उन सब लोगों को अपील करना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी इस तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं या कभी भी आपको इस तरह के जगहों पे जाने का मौका मिलता है तो आप अपने लोगों को भी बताएं और बाकी अपने दोस्तों और जो भी आपकी जानकारी में लोग हैं उनको ये समझाएं कि आप जो करते हैं वो उससे अल्टीमेटली देश का हित हो रहा है और आपका अपना फ्यूचर खराब हो रहा है। हम अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, हम अपने लोगों को ही पीछे लेके जा रहे हैं, तो हमको ये नहीं करना चाहिए। बाकी प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव तरीके हैं और मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स बहुत सभ्य तरीके से भी की जा सकती है, विचार विमर्श से भी लड़ाई ली जा सकती है, और बाकी डेमोक्रेसी में हमारे पास एक अल्टीमेट वेपन है जिसको हम मतदान बोलते हैं। आप इसका इस्तेमाल करें। आज की डेट में भी हमारी जनता मेरे ख्याल से 60% जनता ही वोट करती है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वोटिंग परसेंटेज, 60% 70% तक, तो इससे ज्यादा तो मैंने कभी सुना नहीं कि 70% से ज्यादा कभी हमारी एक अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में गई हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने विचारों के सपोर्ट में जो सरकार आती है उसको चुने और आप उसमें देश के निर्माण में भाग लें, बजाय इसके कि आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करें।
0: और जब ये देखते हैं कि हमारे लोग ही
1: जी
0: दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं, दुश्मनों को खबरें दे रहे हैं, उसके कारण आपके साथियों को तकलीफ हो रही है, साथियों की जान जा रही है, तब कैसा लगता है आप लोगों को?
1: देखिए, हिंदी में कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। सो ये तो हम अगर इतिहास देखें तो हमारा इतिहास ऐसे छली लोगों से भरा पड़ा है जहां अपने ही लोगों ने अपनी साख गिराई हो या अपने लोगों की जान गंवाई हो। अभी एक मैं बहुत रिसेंट मूवी की बात करूंगा, छावा, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी हुई है, और उसमें भी देखें तो शायद अगर वो सूचना नहीं मिलती कि संगमेश्वर के किले में छावा हैं तो शायद उनका वो अंत नहीं होता। तो ये तो बहुत पीड़ादायक बात है और ऐसा होता है। हमारे कंट्रीज में भी, हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश हित में न जा करके देश के अहित के लिए काम कर रहे हैं।

0: और इससे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे करके इस कंट्री को यहाँ तक पहुँचाया है पिछले 75 सालों में। और मुझे लगता है कि हमको सेंटिमेंट्स की कीमत समझनी चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि अगर आज हम देश को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं और एक ग्लोबल लेवल पे हम अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम में से हर एक बंदा अपने तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करे और देश के अहित में जाने वाली सारी गतिविधियों पर रोक लगाए, चाहे वो कम्युनल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो सांप्रदायिक के अलावा जाति के आधार पर भेदभाव करने वाली बात हो, या अपना काम नहीं करके। जैसे मैं एक सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक रोड का इंजीनियर भी अपना काम सही से नहीं कर रहा और रोड के निर्माण के लिए जो उसको स्पेसिफिकेशंस दिया गया है और उस स्पेसिफिकेशंस पे काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरह से देश का आई थी है, क्योंकि वो जो रोड बनाएगा वो बजाय 15 साल चलने के वो अगले 2 साल में ही खराब हो जाएगी
1: और उसमें लोगों की जान जाएगी
0: और उसमें जो लोगों की जान जाएगी वो अलग है। तो आप जब भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से आप अपने कम्युनिटी को, जाति को, संप्रदाय को, सोसाइटी को, देश को आप अहित पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसी हमें देश विरोधी गतिविधियों से बचना चाहिए। अब हम पहले की बात अलग थी, जब हमारा सब लोगों को एडुकेशन नहीं मिल रहा था और लोगों को ये सब बातें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के कारण मुझे लगता है हर लोग इस बात को समझते हैं। और पर एक मुझे एक पॉजिटिविटी इस बात से दिखती है कि आज जितने लोग शायद नेगेटिव नहीं हैं, उससे कहीं बहुत ज़्यादा लोग इस मामले में पॉजिटिव हैं और लोग इस बात की महत्ता को समझते हैं। और आज मैं सोशल मीडिया का जो ट्रेंड देखता हूँ, छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को उजागर करना, उसको वायरल बनाना और उसको इस तरीके से बनाना कि बाकी लोग भी उसको फॉलो कर सकें, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। तो जब भी मैं ऐसी खबर सुनता हूँ, मैं निराश जरूर होता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे यंगस्टर्स आज की डेट में इन बातों को समझते हैं, उनको इस बात का एहसास है कि हमको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, और देश हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये एक मैं पॉजिटिव आउटकम देखता हूँ।
1: अच्छा, आपका स्कूलिंग बिहार में हुआ?
0: जी।
1: उस वक्त गाँव में हुआ, शहर में हुआ?
0: हम उसको पूरी तरह से शहर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कस्बा समझ सकते हैं, छोटी सी जगह
1: मुजफ्फरपुर। कैसे लोग थे?
0: बहुत ही
1: बचपन की यादें बताइए।
0: जी, बहुत ही सिंपल। हमारा जो शहर था वो एक कस्बे के तौर पे समझिए, और बहुत ही अतरंगी माहौल होता था। हम बचपन में बहुत शरारतें करते थे, दिन भर हमारा स्कूल में और उस बाकी जो बचा समय था वो हम
1: ग्राउंड में
0: बच्चों के साथ खेलने में बिताते थे। और चूंकि कस्बा था, खेलने की बहुत जगह नहीं थी, तो जो भी गली और जो भी हमारे आसपास जो भी छोटा सा खेल का मैदान मिलता था, तो हमने भी शायद वही काम किए जो उस समय के बहुत सारे लोगों ने किया, और बहुत शरारतें लोगों के साथ भी, अपने बाकी खिड़की के शीशे तोड़ना, छोटी छोटी शरारतें घर में जा कर के, फल तोड़ लेना, किसी के बगीचे से अमरूद तोड़ लेना, लीची तोड़ लेना, और इस तरह की बहुत बहुत सारी हरकतें और बहुत सारी शरारतें हमने भी की हैं। बट वो एक बहुत अच्छा दौर था, क्योंकि उस समय मैंने जो एक कम्युनिटी लिविंग का एग्जाम्पल देखा, वो बहुत खास बात थी हमारे।
1: क्या बात?
0: जब हम बचपन में सारे मोहल्ले के बच्चे, हमारा एक टाइमिंग होता था कि ठीक है, हम शाम को 4 बजे मिलेंगे और उसके बाद हमारा क्रिकेट होगा या कुछ और गेम होगा, तो वो कम्युनिटी लेवल बहुत ब्यूटीफुल था। मुझे अभी भी याद है कि उस समय जो हमारे त्यौहार होते थे, वो एक बहुत ही आत्मीयता और बहुत ही अमेजिंग तरीके से, होली तो हमारा फेवरेट त्यौहार होता था, क्योंकि हर घर से हर आदमी उस समय बाहर होता था। हमारे मोहल्ले में करीब 20 घर होते थे और सब लोग बाहर आते थे, सब लोगों का पार्टिसिपेशन होता था। हमने तो सड़क के बगल में गड्ढा भी खोदा था, बच्चों को भी उसमें डालते थे, बड़ों को भी उसमें डालते थे, लेकिन जो पार्टिसिपेशन था, मैं वो होली सेलिब्रेशन तो आज तक नहीं भूल सकता, बहुत ही ब्यूटीफुल। हमारे बिहार में उस समय कल्चर था कि होली हमारी 2 पार्ट्स में खेलते थे। तो जो सुबह का पार्ट होता था वो रंग का होता था, सुबह 9 बजे से शुरू होता था और वो 12, 1 बजे, 2 बजे तक चलता था। और उसके बाद क्या होता था कि आपका एक नॉर्मल ड्रिल होती थी कि आप जाएं, फिर आप अपने रंग से पुते हुए चेहरे को साफ करें, फिर नए कपड़े पहने और ट्रेडिश

0: ट्रेडिशनल ड्रेस जो भी उस समय लोगों को सूट करता था, तो वो ट्रेडिशनल ड्रेस नए कपड़े पहने और फिर हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे और अबीर गुलाल का इस्तेमाल होता था और सबके यहाँ बहुत बढ़िया पकवान बनते थे। तो शाम तक ऐसी हालत हो जाती थी कि मतलब आप कुछ और खा ही नहीं सकते थे। और उस समय एक ट्रेंड था कि जितने भी आपके दोस्त हैं वो आपको शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक आपको सबको कवर करना है। और ये बहुत प्यारा ट्रेंड था, बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी लिविंग का एग्जाम्पल मैंने देखा है। आजकल मैं देखता हूँ तो अभी जैसे नासिक में मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो है अभी भी है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर वो जो उस समय का जो माहौल था वो तो मैं कहीं मिस करता हूँ डेफिनेटली। अभी हमारी जो सोसाइटी का जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि अभी वो बात नहीं है, शायद अलग अलग जगहों से भी लोग आए हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अभी वो शायद गांव के वो जो मोहल्ले की और जो छोटे कस्बे
1: मासूमियत
0: की जो मासूमियत है वो शायद अभी शहरों में नहीं है। ये भी एक अलग तरीके का आयाम लिया हुआ है, ये भी ब्यूटीफुल है, पर पुरानी बातों की तुलना नहीं कर सकते।
1: स्कूल लाइफ कैसा रहा?
0: स्कूल लाइफ बहुत बढ़िया था,
1: मतलब स्टूडियस थे हमेशा?
0: बहुत स्टूडियस तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा अगर मैं सही मायनों में बोलूं तो मेरा बचपन में तो मेरा बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई में बाकी बच्चों से बेहतर जरूर था। कम पढ़ाई करता था, लेकिन जितने भी मैंने पढ़ाई करी या जितना भी टाइम मैंने डिवोट किया, तो मैं अच्छा, मेरे रिजल्ट्स हमेशा बढ़िया ही रहते थे। नॉट पॉसिबली द फर्स्ट और सेकेंड टॉपर, लेकिन पहले 5 बच्चों में तो मैं कहीं भी किसी स्कूल में मैं हमेशा ही
1: और स्पोर्ट्स वगैरह अदर
0: रहता था।
1: एक्टिविटी क्या थी स्कूल में?
0: स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की अपने बचपन में, और शायद उसका कारण ये भी था कि हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। सरकारी स्कूल में हमने क्लास 8वीं के बाद शुरू किया, उसके पहले की जो हमारी पढ़ाई लिखाई थी वो एक कॉन्वेंट स्कूल में होती हुई थी, और छोटा कस्बा था, स्कूल भी बहुत छोटा था, तो बहुत ज़्यादा वैसे स्पोर्ट्स का तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने इंडोर स्पोर्ट्स में, चूंकि हमारे स्कूल में इंडोर स्पोर्ट्स का बोलबाला था, तो इंडोर स्पोर्ट्स में मैंने थोड़ी दिलचस्पी ली। मुझे चेस बहुत पसंद था बचपन में, और मैं अभी भी ठीक ठाक चेस खेलता हूँ, अभी तो काफ़ी समय से नहीं खेला, लेकिन वो दिलचस्पी थी। कैरम वगैरह हम लोग बहुत
1: तो चेस
0: खेलते
1: के कारण मूव्स करना आपको आसान गया होगा,
0: थे
1: फील्ड में
0: शायद
1: ये
0: जी,
1: डिजाइन
0: आप
1: डिजाइन करना।
0: एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चेस जो है आपकी एक लॉजिकल एबिलिटी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है, और उसका डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्ट अफेक्ट और रिजल्ट तो आपको मिलता ही है अपने करियर में।
1: आपको फोर्स में जब आप थे तो आपको क्या जिम्मेदारी थी ज्यादातर कि नहीं भाई राकेश कुमार में ये क्वालिटी है वो यूज करते हैं, ऐसा कुछ होता था सबके साथ?
0: मेरी अगर मैं अपने यंगस्टर डेज की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब तो मेरे सीनियर्स शायद ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे, बट मेरी तरफ से मेरी एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की क्षमता मेरी हमेशा से ज़्यादा अच्छी रही है। तो कभी भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो, आउटडोर्स में कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराना हो, कोई ट्रेनिंग इवेंट कराना हो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं हमेशा अपने सीनियर्स के लिए एक बेहतर चॉइस था। जी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मेरा हमेशा से स्ट्रांग पॉइंट था, क्योंकि मेरी ये काबिलियत थी एडमिनिस्ट्रेशन में या लॉजिस्टिक्स को सही तरीके से प्लान करना, एंटिसिपेट करना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और किस तरीके से लोगों को ब्रीफ किया जाए ताकि ये पूरा इवेंट जो है वो सही तरीके से चल पाए। ये मुझे लगता है ये मेरी दिलचस्पी भी थी, और शायद जैसा आपने बोला चेस खेलने के कारण आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, और उसको आप प्लान करके अपने एग्जीक्यूशन में शामिल कर सकते हो, तो ये मेरा एक स्ट्रांग पॉइंट था शुरू से।
1: और आपने जब ट्रेनिंग ली तो कुछ
0: जी
1: स्पेसिफिकेशन होती है क्या फर्स्ट सेकंड लास्ट ईयर में वगैरह?
0: नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग में कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होती, मिलिट्री ट्रेनिंग में आर्म्स स्पेसिफिकेशंस होता है। जैसे IMM में जब आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक आप फिट सोल्जर बनते हैं, और आपकी ट्रेनिंग के लास्ट में आपको आर्म्स अलॉट होते हैं, जैसे मुझे इन्फेंट्री अलॉट हुआ।
1: वो कैसे अलॉट होती है? चॉइसेस पूछी जाती है कि आपका
0: च्वाइसेस और मेरिट लिस्ट दोनों
1: मेरिट
0: के
1: लिस्ट? ओके
0: ऊपर डिपेंड
1: ओके
0: करता है, तो आपने जो भी आर्म्स के लिए च्वाइस दी हैं और आप पासिंग आउट में जिस मेरिट पे हैं उसके हिसाब से, वो उनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, और मुझे लगता है ये सिस्टम बहुत जगह पे फॉलो करना चाहिए। कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अगर क्लास में टॉप कर रहे हैं तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। जैसे अमूनन हम तौर पे देखते हैं कि यूपीएससी एग्जाम का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर आप टॉपर्स हैं तो आपको आईएएस या आईएफएस आप चूज करेंगे, और अगर उसके बाद आपकी मेरिट है तो वो जनरली आईपीएस में जाएगी, और उसके बाद की जो मेरिट लिस्ट है वो बाकी सर्विसेज में जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि ये माना जाता है कि जो टॉपर्स हैं वो तो या तो फॉरेन सर्विस लेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेंगे, पर हमारे में इस तरह का नहीं है। हमारे में क्या होता है, अगर जैसे सपोज कीजिए कि 15 कोर हैं और 15 कोर में हमको इंडियन आर्मी में कैडेट्स को भरना है, तो हम 15 कोर का एक ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक को रिपीट करेंगे। तो ऐसा होगा कि 1 से 15 तक की जो मेरिट लिस्ट बनी है, अगर सपोज कीजिए 400 कैडेट हमारे पास आउट हुए हैं, तो 1 से 15 तक की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन 15 कोरों में जाएगी। फिर 15 से 30 के साथ भी यही रिपीट होगा, फिर 30 से 45 के साथ भी यही रिपीट होगा।
1: वेरी गुड।
0: तो इसका मतलब अगर मान लीजिए सिग्नल कोर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि ये बहुत पॉपुलर नहीं है, तो वैसा नहीं होगा जैसा अमूनन यूपीएससी में होता है कि एकदम बिल्कुल मेरिट लिस्ट में छटे हुए लोग ही अब इसमें आएंगे, और हम पहले ही मान लेते हैं कि भाई ये लोग तो सारे ब्राइट लोग तो किसी एक अलग ही जगह पे चले गए,
1: तो पूरा बैलेंस निकल जाएगा।
0: जी, तो ऐसा नहीं होता आर्मी में। आर्मी में ये होता है कि अगर सिग्नल कोर है तो इसमें मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का टॉपर भी आएगा, और नीचे से जो सो कॉल्ड जो मेरिट लिस्ट में काफी पीछे हैं उसमें से भी बंदे आएंगे। तो एक कोर में वो बैलेंस हमेशा बना रहता है। तो इन्फेंट्री में ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि जो कैडेट जो टॉपर हैं वो इन्फेंट्री में नहीं जाते, वो तो हमेशा आर्मर्ड में ही जाते हैं या आर्टिलरी में ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। इन्फेंट्री में भी आपको टॉपर्स मिलेंगे, आर्मर्ड में भी टॉपर्स मिलेंगे, आर्मर्ड में भी लेगार्ड्स मिलेंगे। सिमिलरली एक आर्मर्ड कोर है हमारी, आर्मर्ड कोर जिसमें सेना जो है हमारी टैंकों के साथ लड़ती है।
1: ओके।
0: जी जी। तो ये एक बहुत ही मेरिटोरियस सिस्टम है जिससे आप हर कोर की बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मापदंड है जो बाकी जगह पे भी
1: होना चाहिए,
0: अनुकरण कर सकते हैं आप इसका।
1: और अभी मेन आपके परिवार के बारे में बताइए।
0: मेरे परिवार में मेरी माँ है, अभी पिताजी तो नहीं रहे, और
1: सब नासिक में।
0: मेरी माँ अभी मेरे साथ नासिक में रहती हैं मेरे फार्म पे, और मेरी पत्नी के अलावा मेरा एक ही बच्चा है, बेटा है मेरा अमोलिक शौर्या, और वो अभी ही इज अबाउट टू टर्न 14, सो ही इज गेटिंग इनटू टीनेज।
1: तो उसकी क्या इच्छा है
0: और
1: उसके प्लान्स बनना शुरू हो गए कि नहीं अभी? बिल्कुल, बहुत प्लान्स बने।
0: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। और उसको शायद हमारी आर्मी लाइफ देख करके उसको शूटर बनने की उसको शायद प्रेरणा मिली।
1: ओके, सो ही इज इन स्पोर्ट्स।
0: ही इज इनटू स्पोर्ट्स, ही इज डूइंग वेल इन स्टडीज आल्सो। अशोका ग्लोबल अकेडमी में या नासिक में वो पढ़ रहा है, और शूटिंग भी करता है, और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि अभी वो स्टेट लेवल पे यस रिप्रेजेंट किया, और वो शूटिंग में नेशनल के लिए उसने क्वालिफाई किया है, और अभी वो देखते हैं स्पोर्ट्स को सीरियसली ले रहा है, देखते हैं वो कहाँ पहुँचता है। जी
1: ओके, आगे के क्या प्लान्स?
0: मेरा आगे का प्लान्स तो अभी तक जो है वो जैसा मैंने पहले बोला कि मैंने एक इंटरप्राइज फार्म्स ऑर्गेनिक जो मैंने अपना फार्म बनाया उसी को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्रो टूरिज्म एंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मुझे डेवलप करना है। अभी हमने कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं
1: जैसे
0: जिसमें मैं अपनी तरह के एंटरप्रेनर्स की मदद करना चाहता हूं, और मुझे क्योंकि मैंने बिल्कुल नए से शुरुआत की, मुझे समझ में आया कहाँ कहाँ गैप्स हैं और कहाँ कहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, और मैं उसके अलावा एक बिजनेस पर्सन को कौन कौन से सॉफ्ट स्किल डेवलप करने चाहिए ताकि अपने वो बिजनेस को एक नए आयाम पे लेकर के पहुंच सके, उसके लिए भी हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है। सो इट इज बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आपको उन कौन कौन से सॉफ्ट स्किल पे फोकस करना चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो हमने वो कोर्स लॉन्च किया है, वो अभी हम वीकेंड कोर्सेज चलाते हैं उसका, एक वो दिन भर की भी क्लासेस हैं, हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी चलाते हैं, और हम आपको वो अभी तो हमने फिलहाल 7 दिनों का कोर्स बनाया हुआ है। इट्स ए पावर पैक्ड कोर्स जिसमें हम हर एस्पेक्ट पे कवर करते हैं, तो इस पे फोकस कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अपने जैसे बहुत सारे एंटरप्रेनर्स बना सकें जो हमारे इस कंट्री को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन एज ए इकोनॉमिक माइट, हम इसको आगे लेके जा सकें।
1: आपके फार्म का कुछ पेज वगैरह है जो जिसको फोटोज वोटोज वो लोग देख सकें?
0: जी, हमारा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और हमारी इंटरनेट पे भी प्रेजेंस है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। सो आप फॉग फार्म्स ऑर्गेनिक,
1: फॉग FOG,
0: जी FOG, फॉग फार्म्स ऑर्गेनिक, एंड हमारा वेबसाइट भी है www.fogfarmsorganic.com। तो आप जितने भी हमारे प्रोसीजर्स हैं, जितने भी हमारे फैसिलिटीज हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ये सब आप उस पे रीच आउट कर सकते हैं।
1: थैंक यू कर्नल साहब, होप यू एंजॉयड।
0: बिल्कुल,
1: 3 संडेज दिया आपने हमारे लिए।
0: तहे दिल से आपका शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस खास अवसर पे बातचीत करने के लिए। और मैं आपको सही में बधाई देना चाहूंगा कि आपने ना तो सिर्फ अपना पैशन फॉलो किया, बट आप जिस शिद्दत से ये काम कर रहे हैं, मुझे आपने बताया कि ये 10 साल आपने अभी पूरे किए हैं। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट, इट्स ए रिमार्केबल शो ऑफ डिसिप्लिन कि आप इस चीज को 10 सालों से निरंतर कर रहे हैं। अगर ऐसे डिसिप्लिन से हम किसी भी फील्ड में उतरे, मैं लास्ट संदेश में आपने अपने सारे दर्शकों या श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इस डेडिकेशन से किसी भी फील्ड में उतरे और अगर आप उसमें 10 साल तक लगे रहें, तो एक्सीलेंस इज इनएविटेबल। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्सीलेंस में पहुंचेंगे, वो तो होना ही होना है। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: धन्यवाद। और हम भी जरूर आएंगे फॉग फार्म्स पे।
0: थैंक यू, यू आर ऑलवेज वेलकम।
1: मंडळी, देशावर प्रेम फक्त 2 दिवस नसतं करायचं, आयुष्यभर करायचं असतं। आणि देशसेवा म्हणजे फक्त मिलिटरीतच जायला गरज नाही, तुम्ही तुमची सिव्हिल ड्युटीज जरी पाळली ना, व्हॉट्सअपवर आपण काय फॉरवर्ड करतो काय नाही, कोणत्या चर्चेत सहभागी होतो, कोणाशी चर्चा करतो, कुठली गोष्ट मनात ठेवायची, कुठली एका कानाने ऐकायची दुसऱ्या कानाने सोडून द्यायची, ह्या गोष्टी जरी शिकले, करप्शन होणार नाही याची काळजी घेतली, करप्शन एका हाताने होत नाही, करप्शन दोन्ही हाताने होतं, कर्नल म्हटले तसं वोटिंग नियमित केलं, असं म्हणून चालणार की पर्यायच नाही, तुम्ही सुरुवात तर करा, पर्याय आपोआप निर्माण होतील ज्यावेळेस त्यांना वाटेल की लोक चांगल्यालाच मतं देत आहेत, कारण सगळेच वाईट नसतात, चांगले असतात, वाईटातली पण चांगली बाजू शोधायला पाहिजे आणि आपण आपली देशाच्या प्रती ड्युटी पूर्ण करायलाच पाहिजे। राम राम मंडळी, भेटूया।